प्याला 10 रुपये माल ही माल मिलेगा तो भी गोल्डन कलर का माल मिलेगा। 10 से 10 देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा अस्त जी। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये बोलो जी बोलो।

0: कासिल भाई
1: हां बताले बताले
0: चले चले इधर चले आ भाई 25 के अंदर दिया जरा भाई एक कासिल
2: आ 50 50 50 50 50